कमसा जगा मिदिया मारुदा चाहे कमाल तुआप तुमुनी दरुआप गुंदुआर बगार अंजाव यान नालियान तो सिदान लबुआ साल कारी बुआत तुमंगात बापु पुआत तंगियान गिला चपुआ